0: बरकत मेहर दी रब आप कलाया, देख बरकत मेहर दी रब आप कलाया, देख बरकत मेहर दी रब आप कलाया,
1: खुद के बरकत मेहर दी रब आप कला।

प्रभु ने कोई खेड रचाया, कह कड़ियाणा प्रभु ने कोई खेड रचाया, कह कड़ियाणा प्रभु ने कोई खेड रचाया।

दीर्घायु उच्च विद्या दीदात गुरु सिक्खी जीवन माता पिता ते वडेरिया दी आग्या पालन दी सुमत बख्शिश करनी कारोबारां विच बरकतां पाउणियां किरत कमाइयां विच वादे करने सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया भई अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रहन ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन

प्रभै सहाई सलोक। जैसा दू गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू न छुट है, निकट न जाइयो दूर सलोक महला पंजवा। मन में चित बो चित बनी।

संख जप संख पाहु असंख पूजा असंख तपताउ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचारु असंख सती असंख दातारु असंख सूर मोह पक्षा।

इति सुरत न पाइया। नदिया तैवाह पवह समुंद न जानिय है, समुंद सा सुल्तान गृह सेती माल तन। कीड़ी तुल न हो वनी जे तिस मन हो न वीस रह, अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत।

अमीक है, रफीक है, तंद है, बंद है, निर्बूध है, सूद है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है,

सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुखो दार मूरत जोन आद्य सेख देसार न फीस जाकर रूप रेख न राग जतर तत्र दशा विशा हुई फैलो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक

सर्व साथी अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांद त्वे प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है।

मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछ जगात अज जना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर भूल मना छंद त्वे प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मेहमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारन है तृत के तरन है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंवर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजप अजप है अथप अथप है कृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है कृता कृत है तरणी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खलकायक है विशुंबर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है पवपंजन है अरगंजन है रूपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसवासे नमो बांक भंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे ए

भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासी अगंजुल नामे समस्तल निवासी नृकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करिमल रहीमे।

पंच शब्द तित कर सभागै सब दवाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे सच लवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लवै बाज हो क्या करे विचारिया तुद भाज समर्थ कोय नाही कृपा कर बनवारिया।

न जाय सहसा कित संयम रहे कर्म कमाई सह सहज यो मलिन है कित संयम तोता जाय मन तो हो शब्द लाग हो हर स्वर हो चित लाई कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजय।

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम नूं सुनना करना आपां ने नाभ चक्कर ते सुन सकते हो। हिरदा चक्कर जिथे दिल की धड़कन उत्थे सुन सकते हो। कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है उत्थे भी सुन सकते हो। किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं ले जाना जी। हो जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जी। हो नेत्र बंद रखने कृपा करके जी।

तिन घर ब्राह्मण पूरे ना दो न्यावे होई साध कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूर बोल करे आहार शर्म तरम का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आ भरपूर मत्थे टिक्का तेड़ तो तीक खाई हाथ।

0: जाए।
1: धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म।
0: किते भवानी वैसंतर, किते काल महेश,
1: किते बर में काटत घड़िए है।

0: मित्रै न मित्रै न परम न पित्रै
1: न कर्मं न काय जन्म न जाय
0: न चित्रै न मित्रै परे है पवित्र
1: पृथ्वी अदिश अदृश अकृश
0: भगवती छंद त प्रसाद कसते के अशिज देश के अपिज पेश
1: के अगज कर्म के अपज परम
0: के अपिज लोक है।

0: अफल गुनाह है के साहन सहा है,
1: है
0: राज कर ही महक कर्म करीम है,
1: के
0: सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र धान्य
1: है, के सर्वत्र गौण है
0: के सर्वत्र देश है।

0: खलखंडन है, ब्रह्मंडन है,
1: जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सब कारण है,
0: कृत के तरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है,
1: सर्वकर है, सर्वंकर है, सर्वाश्रय है, सर्वनाश्रय है,
0: कर्णाकर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगत

0: तब प्रसाद सवै एको ओंकार सतगुर प्रसाद पात सहज दसमी तब प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर कर जोग जति के
1: सूर्य सराजन शुद्ध सिदान।

0: के तोड़ नहार सुभात नहीं चकचार लवैया
1: साहेब श्री सबको सरनायक जाचक नेक सो एक दवैया
0: दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे
1: जीव जतै जल मैं थल वै पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे
0: उन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे
1: साध समूह प्रसन्न फिरै जग सतर सब अवलोक छपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र निराद पजौन त्रिलोक राज करें
1: नानक जादक दान अनेक स्वंबर साज परेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे
1: जेना श्रीपत के प्रस है भगते नर फेर न दे तरेंगे
0: कहां पयो जदो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो
1: समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो
0: बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो काहूल पाहन पूज तरयो सिर काहूल लिंग करे लटकायो
1: काहू लिखियो हर आची दिशा मैं काहू पशा को शीश निवायो
0: कऊ बतान को पूजत है पस कऊ मृता

0: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता
1: देखो हरता दुष्ट दुखियन को छ करता
0: श्री अस्त जप हे दयाला पूर्ण करा कर।

0: सारी है।
1: जैसी अग्न उधर में है तैसी बाहर माया,
0: माया अग्न सब एक जेही करता है खेल रचाया।
1: जात सपाना ता जम्या परवार भला पाया,
0: देव छड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया।
1: ए माया जो थर विसरै मोह उपजे पाओ दूजा लाया,
0: कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्ही उपजे माया पाया।
1: हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए,
0: मुल ना पाया जाए किसे मिठोर है लोक मिलाए।
1: ऐसा सतगुरु जी मिले तिसनु सिर सौंपिए विचों आप जाए,
0: जिसका जियो तिस मिले है वह
1: सहमराए। हर आप अमुलक है भाग।

0: महाराज जी ने उन्हूं शक्ति दे नाल दुड़की वाली चाले पालिया है, जिदा टपूसिया मार मार के
1: कर तोज गुर धीरज दीन।
0: फिर गुरु जी उन्हूं हौसला दिंदे आ भी खलो जा हुण, कदी उन्हूं किसे चाले पाउंदे, घोड़िया दी चाल हुंदी तुरन दी, कदे किसे चाले महाराज जी उन्हूं टेस्ट करदे घोड़े नूं भी इह किन्ना क सियाणा आ, किन्ना क शोभनीक, किन्नियां क चालां जाणदा। कदे ओनू हौसला दे के ओनू थापड़ के ते ओनू रोक लैंदे हन,
1: छोटी चाल उछालन करे।
0: कदे महाराज जी छोटी छोटी चाले ओनू तोरदे, छोटी चाले भी बहुतियां छालां नहीं मारनियां, निके निके पैर रखने। इस तरह महाराज जी फिर उछालदे हन उसनू उपर नू,
1: गिन गिन चरण मन हूं तर तरे।
0: कवि जी कहंदे के इस तरह जिवे मानो के घोड़ा जेड़ा ना गिण गिण के अपने पैर धरती दे उत्ते तर रहा हौली हौली।
1: बोहर तवाए बेग को हेरा।
0: फिर महाराज जी ने बहुत तेजी दे नाल पजा के वेख्या है,
1: भाखत काबू ते सुजस बडेरा।
0: महाराज जी ने बड़ा जस कीता इस घोड़े दा के बहुत चंगा घोड़ा है,
1: जान बाजी मेली बड बाजी।
0: फिर महाराज जी ने घोड़े जिदा बाजियां पवाईया हन,
1: नट बाजी जिस देखत लाजी।
0: इस तरह वड़िया वड़िया बाजियां पाईया घोड़े ने के बहुत ही सुंदर लगिया,
1: कौन कौन को कीन पछेरे।
0: ते भजदा इदा सी के हवा भी पिछे रह जांदी सी तेज चलन वाली।
1: बपुरे मृग कहां सम
0: मृग, मानो के जेड़ा मृग हुंदा, मृग की हुंदा, मृग असवेर आले बाबा जी सिंह जी जथे आले हैगे ते हैगे, ते दूसरे बाबा जुझार सिंह जी है वो भी हैगे। मृग तुहानू दस्या ही सवेरे किहदा शिकार कीता सी भाई तलोका जी ने, है दसो बोलो। हिरन, हिरन नु मृग कहंदे आ। बाणी च भी जिथे मृग आएगा ना उसका अर्थ होना हिरन, ते हिरन बहुत तेज चलदा ना, घोड़े नालों तेज चलदा के हौली तेज चलदा। उन्हें वेखे सवेरे सुनिया इन्होंने पिछे छड्डता है राजे दे घोड़ा, राजे दा घोड़ा जेड़ा पिछे रह गया। हिरन बहुत तेज चलदा, पर यह घोड़ा जेड़ा महाराज जी जदों चलाउंदे आ ना इन्नी तेज चलदा आ के मानो के हिरन भी एदी बराबरी नहीं कर सकता, इन्नी तेज आ घोड़ा इह।
1: मन के साथ सखापन तारे,
0: इन्ना सियाणा आ के मन दे नाल असवार दे मन दे नाल ऐ वधिया एकमेक हो जांदा घोड़ा। वैसे भी जिहड़े घोड़सवारी करदे उहनां नूं पता, आम तौर ते भी घोड़ा जिहड़ा आ उहनूं सियाणा जानवर मन्निया जांदा। ते जदों जे किते आप जी भी घोड़े ते सवारी करो ना, जे तुसी घोड़े ते सवार हो के डरोगे, जे डरोगे कि असी डिग ना पईए, ते घोड़े नूं पता लग जांदा कि तुसी उहदे ते बैठे डरन दे, उह तुहानूं सुट दिंदा है। हां उहनूं पता लग जांदा, ते जे तुसी ऐन कॉन्फिडेंट हो के बैठो उपर, ते फिर उह बहुत सोहणी सवारी कराएगा, उहनूं पता लग जांदा। घोड़ा जिहड़ा अपना मन जिहड़ा जाण लैंदा, सवार दा मन जाण लैंदा। ते घोड़ा इदां दा सी के महाराज जी दे मन नाल एकमेक हो गया, ऐ वधिया उहदी जिहड़ी सिंक हो गया मन दे नाल, इक जैसा ही हो गया।
1: जन चपला को चपल सिखारे।
0: इस तरह ओ इन्नी तेजी दे नाल तुरदा ते रुक जांदा है जिद्दां बिजली नहीं आउंदी ते जांदी, इस तरीके दे नाल।
1: नैन नागरी ते होए आगर।
0: अखां बहुतियां ही सोहणियां सन घोड़े दियां।
1: किदों जूप को दाब उजागर।
0: ऐ जेड़ा वेखे ते लुटिया ही जांदा सी, कहिंदा सी बहुता ही सोहणा है घोड़ा।
1: छाती छुबै छाल पग दौन।
0: जदों छाल मारदा सी उपर घोड़े वेख्या ना अगों उपर नूं चले जांदे, दो पैर चुक लेंदे ना, ते ओ जेड़े दोवें पैर सी ओदी छाती नाल अपनी नाल ला लेंदा सी जदों इदां खड़ा हुंदा सी घोड़ा।
1: चित लग पाछल पाए सो आन।
0: ते पिछले पैर इस तरह कर लेंदा सी जदों दूरों देखदे सी इदां लगदा सी धरती ते लगण ही नहीं दे, के बहुत थोड़ा हिस्सा पैरां दा धरती

0: पढ़ी है पंक्ति,
1: तब सतगुर मन मोद उपायो।
0: सतगुर सच्चे पातशाह बहुत ही प्रसन्न होए, बहुत ही खुश होए भाई गोपाला जी ते।
1: जानू उठवे हे तू उठायो।
0: ते ओने चिर नू महाराज जी ने अपना ना गोडा एक चुक लिया। चौंकड़े च बैठे सन महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, उठन लगे हन। उठन तो पहला एक गोडा चुकया है ता।
1: तिलक देन को चाहियो हृदय।
0: इसलिए उठन लगे हन के भाई गोपाला जी नू हुण गुरता गद्दी दा तिलक ला दिए कि अपने तख्त ते सतवें सतगुर जिहड़े हो भाई गोपाला जी नू बना दिए। इसलिए उठन लगे हन धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी।
1: सिख ने करियो मनोरथ तबै।
0: ते जदों भाई गोपाला जी ने वेख्या कि महाराज जी ने गोडा पुट लिया है उठन लगे, ते इस तरह मन विच विचार लिया बाणी जपदे आई।
1: रहियो पंच मोह बड़ मोल।
0: पता की सोचन लगे भाई गोपाला जी, कहिंदे जेड़ा पंजवां घोड़ा सी ना महंगे मुल दा, किथे आ घोड़ा बचा? तबेले च सोचन लगे, कहिंदे जेड़ा पंजवां घोड़ा वड्डे मुल दा, सवा सवा लाख रुपये दा एक घोड़ा सी उस समय। सोच के वेखो किद्दां दे घोड़े होणगे, सवा लाख रुपये दे एक घोड़ा, ते पंज घोड़े भाई सुभागा जी लैके आए। ते भाई गोपाला जी सोचन लगे जेड़ा पंजवां घोड़ा वड्डे मुल दा,
1: सो मैं लियूं गुरु ते बोल।
0: मैं ना ओह हुण जपजी साहब दी संपूर्णता ते गुरु जी दे कोलों ओह बोल के लै लेना के महाराज मैनूं घोड़ा दे दो।
1: जीन समेत पाए कर सो।
0: महाराज सच्चे पातशाह काठी पा के ओह घोड़े दे उत्ते
1: चढ़ो तिसी पर मन मुदो।
0: ते मैनूं दे देण ते मैं ओहदे ते सवारी करां जिवें भाई विधि चंद जी ने कीती सवारी महाराज दे सन। मैं भी उते सवारी करा ते बहुता ही खुश होवांगा।
1: अस असो पर होवन असवार।
0: मैं उस घोड़े ते सवार हूं।

आँख उजले केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

श्री असपान कृपा तुमरी कारा, मैं न कहो सब तुहे बकान्यो धोरा, सगल द्वार को छाड़ कै कहो तुहारो द्वार, बहें गए की लाजस गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को छाड़ कै गयो तुहारो द्वार, बाहें गें की लाजस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरु तै पाया, सहज सेती मन वजियां वादाइया, राग रतन परवार पईया शब्द गावनी आईया, सतो तै गावो हरि केरा मन जिनी बसाया, कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे, दू सब विचारना अंगीकारो करे तेरा, काज सब सवारना सवना गला सम्रत स्वामी, सो क्यों बनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रो नाले, साचे साहिबां क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब विच है, जिस देह सो पावे सदा सिसला तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन बसिया, बाजे शब्द कनेरे कह नान सच्चे साहिबा, क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुखमणी आए बसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर बिट हो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो सब त्रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द बाजे, कला जितगर धारिया पंच दो तुदवास कीते, का कंटक मारिया तुरकर्म पाया तु जिनको, से नाम अर कह लागे कह नानक तैं सकोवा, तितकर आनंद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पर पाया, उतरे सगल विसूरे दुख रो संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन भै ससे, पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवेता, सतगुरिया पर पूरे बिनमंत नान गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, मुद्दावनी महला पंजवा।

आप जी ने अपार बख्शिश कीती है। सोदर रहरास साहिब दा पाठ होया है, बाणी पढ़दियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुलां दी मुआफी बख्शनी। अखर लाग तुक वाधा घाटा भुल चुक मुआफ करनी, अगे तू सुमत बख्शिश करनी। पढ़ी बाणी दा भाव समूह संगत दे हिरदे